0: हर भगत भंडारा।
1: श्लोक महला पहला। सचकार कूड़ वर्त्या काल काल खबेता, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पेननहा, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा बिसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ उबे पू, नानक बखाने बेनती तुदवाच कूड़ कूड़ महला पहला।
0: सचता प्रजानी है जरद सच्चा होए, कूड़ की मुल

0: निवेश गौरा हो अपराधी दुना निवे जो हंत अमर गाहे शेष निवाइये क्या थिए जरे देख सुदे जाहे महला पहला।
1: फड़ पुस्तक संध्या वादंग सिलपूज सुगल समादंग मुख झूठ बिफुखन सारंग त्रिपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लटंग धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं करमंग सब फोकट नेचो करमंग कहो नानक नेचो त्यावे विन सतगुरु बाट न पावे पड़ी कपड़ू सुहावना।

फिटै तन फिटै बिड़ करे न मन जुठै चुली प्रेम कौन आन सच ते आइए सुच होवे तो सच पाइए पुण।

जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए सूतक वो बेर सोए, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे तोए महला पहला।

तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़

खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर्श तेरे की प्यास मन लगी सहज आनंद बसै बैरागी नानक की अरदास सुनी जै केवल नाम हृदय में दीजै।

होए जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात जैना दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नामे बायस नात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत अमरी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सहे मिल संगत गुण परगास जिना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितुमहे उद्दाम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर में जनते उपाय ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोयरों किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया ऊडे ऊड आवे सै कौन सा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे

तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवर भैले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकजो मोह पग नहीं चाले। हम देख तहन डूबियले मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहो। ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणत नानक तिनकी शरणा जैना तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भज केवल नाम। स्रंग जावन आग पवजल तरन कै,

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पादशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काबो हो आवहादय मोहे बचावो हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैर इनको आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

सेवक सिख मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आब हाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निबरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लेओ मोहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछने, कट कट के पट पट की जन्ने, जावे अध कर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जावे आकर्क कर तुहू कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

इति तुमरा लखा न जहे पसारा केहि बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुपस रूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज रज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट पयो शंकर अकैठा।

अर्यसिक संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे आसुतम शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताके कालन कटन है रक्षा होए ताहीं सब कला।

मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट सहाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा

शरण ही आप हाथ दे ले हो बारी सर्वठो मोह हो सहाई दुष्ट दे ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्वठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सुबह जावे।

गोविंदास्तुहा कली मातीजा अनंतों का सतगुरु मैं पाया सतगुरता।

परियां शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाय आनंद होआ तू मैं पाया ए मन मेरा तू सदार हो हर नाले हरो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ए तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो कह ना रे सदर नाल साहेबा क्या नाही कर करता तेरा सब किच है सो तेरी नाम मन वसा नाम मन वसया वाजे शब्द कने रे है नानक सच क्या ही गए अच्छा नारो साधार मेरा जेखा सभ्या कर शाख मन आय वसया जैनों इच्छ हो जाइया सदा कुर्बान कीता गुट हों जिस दिया एह वड़ियाइया कह नानक संत हो शब्द तर पे आरो चा नाम मेरा आधारो वाजे तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे जित कर तारिया पंच दूत कीते काल कंडेया तुम पाया जिन को से नरके कह ना तिर अन्नहद वा सगल मनोरथ पूरे पार पाया वसूरे दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी संत साजन परसे पूरे जानी सोना ते पोनी है पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे नी कह तो वित सतगुर रहा पर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

पंजा तो नाही जोग होई मैं निर्गुण गुण नाही आपे तरस पायो तरा रामत होई मिले नानक मिले ता जीवा तन मन थीवेया तरस मेहराम होई सतगुर मिले नानक ना मिले ता जी मन थीवे हरे वाहे जी का खालसा वाहे जी।

संगम इरी सोहंदिया नानक सोई दिनस सुहावड़ा जित प्रवया वे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत नानक आए से प्रवान है जिन हर उठा चित गाली अल पलालिया कम नया वे मित नानक मित्राई तिस्यों सब कुछ जिसके हाथ कुमित्रा से कांडिये एक बिख न चले साथ नानक अंधा होए कै रतना परखण जाए रतना सार न जानी आवे आप लखाए सो कहो टल गुर सेवी है आहिन सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह हो माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहां देशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सभं गुरप्रसाद राग सूही महला पहला

0: तीन चीजा उस वेले महाराज ने दित्तियां भाई राम कोयर जी नू, एक ढाल और एक कटार और एक जितना महाराज जी ने श्री साहब जिन्हों आपां तलवार कह दिंदे आ किरपान, ये तीन चीजा उस वेले महाराज ने भाई राम कोयर जी नू बख्शिया हन।
1: कर पग पंकज बंदना आयो निज डेरे,
0: कहिंदे महाराज ने नाले बचन कीता भी तुहाडी उम्र लंबेरी होएगी और असी शरीरक चोला जदों त्यागना उस तो बाद तुसी जिहड़ा ओ गुरमत दा गुरसिखी दा प्रचार जिहड़ा ओ तुसी करना, भाव गुर इतिहास तुसी सिख संगतां नूं सुनाउणा है। भाई राम कोयर जी इतिहास सुनाउंदे भी रहे आ ते संगतां बड़े प्यार नाल भिज के टिक के भाई राम कोयर जी कोलों इतिहास सुणदियां सी, ते जिहड़ा प्रसंग चंगा लगदा ना प्यारा मिठा उहनां नूं फिर दोबारा रिपीट करन वास्ते कहना भी भाई साहब आ प्रसंग दोबारा सुनाओ, आ प्रसंग जिहड़ा ये दोबारा सुनाओ। ये भी ध्यान रखियो जे साडा गुरु नाल प्यार होएगा ना गुरु नाल ते जिहड़ा प्रसंग तुहानू चंगा लगे तुसी कहो भी ये भाई साहब ये इतिहास ये प्रसंग दोबारा सुनाउणा है, ये प्यार है। ते कई काले पै जांदे उतावले हो जांदे भी ये तां कल भी सुनाया सी अज फिर सुनाता तुसी, ये बार बार इको ही प्रसंग सुनाउंदे हो, इत्थे फिर पता लगता भी प्यार नहीं है। जिदे अंदर प्यार है वह तो बार बार सुनना चाहता है, वो तो कहना होर बार बार दोबारा सुनाओ दोबारा सुनाओ, ये प्रसंग बहुत ही सानू प्यारा लगता है, ये प्यार है। तो कई जड़े वो काले पै जाते हैं भी तुसी ये भी पिछले हफ्ते सुनाया सी अज फिर वही सुनाता, कल सुनाया सी अज फिर सुनाता, इत्थों फिर पता लगता है माफ करना भी गुरु नाल प्रेम नहीं है। हुण भाई साहब जी नूं संगतां उचेचे तौर ते इह कहिंदियां हुंदियां सी भी भाई साहब आ प्रसंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा सुनाओ, आ गुरु साहब दा इतिहास सानूं सुनाओ, ते उह सुणाउंदे भी बड़े प्यार नाल भिज के सी। इस वास्ते महाराज ने नाले बख्शिश दित्ती और नाले ये तीन बख्शिशां कटार ढाल ते किरपान साहब जी ने बख्शी, ते भाई राम कोयर जी कहिंदे मैं फिर ये तिन्ने दातां लैके गुरु महाराज दे चरणां च नमस्कार करके

0: अंदर भावना नहीं रहेगी, श्रद्धा, इन्हां अंदर श्रद्धा जड़ी है वो गुरु प्रति, गुरु नानक साहब दे घर दे प्रति नहीं। भई दूर उर भावना, अंदरों इन्हां दे अंदरों जड़ी भावना है वो दूर जड़ी है हो जावेगी।
1: इसको फल दुख लहेंगे चोर है कर चारी।
0: जेड़े गुरु नानक साहब दे घर आउणगे पर सिदक नहीं होएगा, गुरु साहब दे घर आउणगे पर अंदर भरोसा नहीं होएगा, अंदर गुरु प्रति भावना नहीं होएगी, फिर एहो जे जेड़े सिख संगत अखाउण वाले ए फिर की करनगे, ए फिर दुख पावणगे। इन्हां नूं फिर जेड़ा जो इन्हां दे मन दी हालत होएगी उस मुताबक इन्हां नूं दुखदाई फल भोगना पवेगा।
1: बेमुख होए संगत मर है ताज प्राण सिधाए।
0: ये बेमुख जड़े ने ओ हो जाणगे, जां किते ना किते देखो जदों आ विदावा देण वाले ने ओ भी ते गुरु तो बेमुख होए ने ना। महाराज अज ओ गल क्लीयर कर रहे आ बे आउण वाले समय च जड़े गुरु वाले अखाउंदे आ ये त्रै गुणी माया दे जाल विच फस के बेमुख हो जाणगे, ये पखंडियां दे वस पै के सियाणियां दे चक्करां च पै के बेमुख हो जाणगे, सिखी तो मूंह मोड़ लैणगे। ते जिहड़े गुरु दी मत तो गुरु दी सिख्या तो मूंह मोड़ लैणगे उहनां नूं किते सुख मिलेगा, सुख नसीब होएगा। ये गल ते गुरु अमरदास जी ने भी कर दिती है, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुकत ना पावे। मारे कहिंदे बेमुख होए संगत मर है तज प्राण सिधाए। ये कई ते ऐसे होणगे गुरु तो बेमुख हो जाणगे पर इन्हां नूं गुरु दे सन्मुख होण दा समां ना ना मिलिया, ये फिर इसे तरह ही अपने प्राण गवा जाणगे पर मुकत नहीं हो।

रात्रि वेल दे वाहन सजाई गए सजे हुए दिवाना अंदर शब्द कीर्तन गुर इतिहासिक लड़ी वार कथा विचार से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावान दर प्रवान करनी यात्रावां सफल।

परमेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सुधाधिक मुन जन गावे अछल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जाने कब

जन काद जुग लग, तन तन गुर तन, जन्म सक्यत पलो जग, पाताल पुरी जयकार तुन, कब

सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन कौराज अपह भगत जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबे चल अटल आद पुरख फरमायो श्री गुरु राज अबे

गुण गावे मुन ब्यास, जिन वेद व्याकरण विचारे, ब्रह्मा गुण उचरे, जिन हुक्म सब

कीरत कर कीरत शरण कीरत करन शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारन को हर तारन तरन सम्राट सबै विद कुलै समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पो सिखिया सा

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी बालता दे रहबर, करुणा निधान प्रेम दी मूरत, सर्व सांझी बालता दे रहबर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दीआं हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभनां दी झोली दे अंदर पावन हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म तनासरी राग दे अंदर पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 687 अते 688 अंग दे उपर सवायमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਉਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ।